0: यही लोग नेकियों में जल्दी करते हैं और यही इनके लिए आगे निकल जाते हैं, और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदार नहीं बनाते। और हमारे पास एक किताब है जो सच सच कह देती है और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, मगर इनके दिल इन बातों की तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं। और इनके सिवा और अमाल भी हैं जो ये करते रहते हैं, यहां तक कि जब हमने इनमें से आसूदा हाल लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो उसी वक्त चिल्ला उठेंगे, आज मत चिल्लाओ, तुमको हमसे कुछ मदद नहीं मिलेगी, मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थी और तुम उल्टे पांव फिर फिर जाते थे, उनसे सरकशी करते गोया एक किस्सा गो को छोड़कर चले जाते थे। क्या इन्होंने इस कलाम में गौर नहीं किया, या इनके पास कोई ऐसी चीज आई है जो इनके अगले बाप दादों के पास नहीं आई थी, या ये अपने पैगंबर को जानते पहचानते नहीं इस वजह से इनको नहीं मानते।
1: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300 3385569 0300 3385569।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

हिकु ग़रीब थी चवे थो मौला ॾेढ जिरे बि ॿनीअ जो आहे अठ पुट आहिनि रोज़ी मस इज़त जी ॾेढ लख किथां आणियां।

आसम जी आका जीअर पुजायो अब्दुर्रहमान है आस अब्दुर्रहमान जी मौला

अमरीका बीहर ईरान के तेल विकरो करण से पाबंदी लगाए छी पर डीमीटर चवणायत अपने हुरमस में कमर्शियल जहाजन के निशानों बनाने जो इल्जाम मणींदे अमरीका ईरान से तेल विकरो करण से पाबंदी लगाए छी मफामती यादाश नामे बाद अमरीका 21 अगस्त 2026 तक ईरान के तेल विकरो करण की इजाजत डिनी हुई। ईरान पाबंदी के मफामती यादाश नामे की फंजपुरी करार डींदे मफादन ए कौमी सलामती के तहफुज लाए अमरीका कदम जो मुनासिब जवाब दिनों वो

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमात अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी

0: स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
3: न अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे
3: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधायो
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

गुंडागर्दी ऐं हथियार ख़तम थी वियो। ईरान झुकण वारो नाहे। अमरीका हमला करे मफ़ामती यादाश्त जे चार शिकन जी भञकड़ी कई आहे। ईरानी पार्लियामेंट जी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाग चयो आहे त अमरीका खे समझण घुर्जे त धमकियुनि ऐं इस्तेहाल वारो दौर हाणे ख़तम थी चुको आहे।

0: सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चटाबेटी इम्तिहान 2024 के तकरारी नतीजन खिलाफ 23 उम्मीदवारों पारा दाखिल कल दरख्वास्त थी बुधनी अदालत धुरन का 5 अगस्त तीन जवाब तलब करे वरतो दरख्वास्त गुजारन पारा सदन बस चा में बीहर चेक कराने की सदा छठे वेझो पीर तिरकंड साहब केडी वाह में नौजवान बुढ़ी पो गजी वाह गोड़ अली मोहम्मद का तियार वट नौजवान केडी वाह में बुढ़ी पो गोला चारी है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385569 0300 3883 8559।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0320180003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300320432 0242460100।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। You are tuning into Geo Radio FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज जी रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप सुखी जी। जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है। जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपका और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती वाला खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:20 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम तरह लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट अदरवाइज अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफर्स लिए खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल लिए खुदा खैरियत मतलूब। तमाम सुनने वालों को जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जो लोगों की सालगिरह है उनको कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे कि अच्छा सुन। जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। बेकार है, मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम, अहलन वसहलन, मरहबा, बखैर आगले जी आयानु, सद बिस्मिल्लाह, बोंजोर, शावनी हाउ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है।

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होगा, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना.

प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इसी के साथ आगे चलते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: वठणी पवंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है

0: सुनते रहो GFM 94।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।

0: सकते हैं कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर 03000113488 जिसके ऊपर कॉल करेंगे, ठीक है. और सुर लगाओ, गाना सुनाओ जिसमें हम आपसे सुनेंगे एक अदद गाना और वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा. सो हियर कम्स द फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो. हेलो हेलो हेलो. ओके जी, आवाज नहीं आ रही मुझे. हेलो
1: अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: यार गुलाब ली गारी ना सपोर्ट बशाम खान के शायर गाती.
0: थोड़ा सा लाउडली बात करें भाई.
1: यार क्या हाल है भाई?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. प्रोग्राम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल सुनते हैं. रोजाना
0: रोजाना सुनते हैं. ओके मुझे ये बताइएगा कि यार गाना कौन सा सुनाएंगे?
1: गाना अभी आपको बता रहा हूँ, एक राजा उर्फ का है.
0: किसका?
1: राजा उर्फ.
0: ठीक है सुना दें.
1: जिस दिल पे लिखा था नाम तेरा वो दिल ही मैंने तोड़ दिया. दिल पे लिखा था नाम तेरा कोई दिल मैंने तोड़ दिया. होने दिया बस नाम तुझे तेरा नाम ही लेना तोड़ दिया. होने दिया बस नाम तुझे तेरा नाम ही लेना तोड़ दिया.
0: ओके वेरी नाइस. और मुझे बताइएगा कि और कुछ कहेंगे?
1: बस अल्लाह आपको खुश रखे, हमारे लिए दुआ दिया करो, हमारी बहन हो बस.
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, थैंक यू. 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं.

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेने जा रहे हैं. हेलो. ओके, हेलो हेलो हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं आज?
1: अजी आप कुर्बान अली कासकेली को गलाया कोठा जी गुलाम कासकेली लग झंडो मरिया.
0: कुर्बान भाई कैसे ठीक ठाक?
1: दुआ लगी भाई अल्लाह या इशान ना बेनर इन ब्राउन का खुश है और सर बहन
0: जी मैं बहुत खुश हूँ. मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम अजी बुधू पे डाटो मदो दे दियो सागे तो आवाज भलो है मजी.
0: अरे वाह क्या बात है. तो फिर गाना सुना दें. कौन सा गाना सुनेंगे?
1: आज आगे कलाम बुधाएंगे अल्लाह ने जुड़े जाइयो.
0: ओके सुना दें.

0: वार कुलन ते तारा प्यारा पंजी तू लिखाए
1: भैया जी।
2: ओके जी, ये किसका गाना है, सिंगर क्या था?
0: अलन जुनेजो।
2: अलन जुनेजो
0: जी जी।
2: ओके, किसी को डेडिकेट करना है?
0: असा प्यारो दोस्त अजीज सोलंकी नाचड़ी का गुलाम रतुल मरी खालिक लाशारी अजीज जरवार दा जेके बुदर दा सदन के सलाम मोहब्बत।
2: ओके ठीक है, थैंक यू। 03000113488। अच्छा, ये गाना जिसकी आवाज में आपने कहा उसकी आवाज में तो नहीं मिला, लेकिन ये है किसी की आवाज और ये प्ले कर दिया मैंने।

0: जिंदगी गुजारियो।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खाने में. अगर उसी एनर्जी से मिलाएंगे तो जैसे पहले आपकी रोज लगती थी वैसे भी लगेगी.
1: No एनर्जी रोज एकदम एडजस्ट नहीं होगी ना. गर्मी है ना, गर्मी एनर्जी इधर उधर हो जाती है.
0: चले चले, गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखें और गाना सुने, इंजॉय करें. ठीक है
1: ठीक है मैम.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज. ये रहा

0: Okay, जी, one more next caller. Hello.
1: Hello.
0: Hello. कौन बात कर रही हैं? कहाँ से?
1: सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं. अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल?
1: अल्लाह पाक का करम है. दादी आज सुनाए कैसे? ठीक ठाक हैं
0: जी. मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: जी जी, आपका मैं प्रोग्राम सुनता हूँ शौक से.
0: शौक से सुनते हैं, कैसा
1: लगता है? आपका नाम जो रखा है, मैं एफएम की रानी, मैं वही बात कर रहा हूँ नरकना से.
0: ओके जी, एफएम की रानी, वाओ अच्छा नाम. मुझे बताएं गाना कौन सा सुना रहे हैं?
1: मैं आपको सुनाऊंगा, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझने आए मैं क्या करूं,
0: मैं नहीं प्ले कर सकती मैं क्या करूं. बॉलीवुड कंटेंट है. अच्छा नेक्स्ट कॉल है. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. दुआ कवल कैसे हो?
2: ठीक हूँ.
0: मैं बहुत अच्छी हूँ. गाना है कोई अच्छा सा?
2: हाँ है,
0: सुना दे फिर.
2: हम तो मत होश के, हम तो कुछ ना कहे, होश वालों की होश उड़ गए. ये आगे नहीं आता, मुझे सहायता होता है.
0: आप कितने
2: हसी,
0: आप खुद भी नहीं जानते, नहीं जानते.
2: हाँ ये
0: ये वाला प्ले करें.
2: हाँ ये करो.
0: ओके okay, कर दिया. और कुछ?
2: हाँ अच्छा, कभी सिंधी में बात करो ना, आपकी सिंधी रिकॉर्ड.
0: सिंधी में बात करूँ?
2: नहीं, रिकॉर्ड भी करना चाहती हूँ.
0: सिंधी हिंदी ना है मुखे. सिंधी अच्छी है ना? थी की गलायूं सही
2: है.
0: इतनी
2: बेटा से सिंधी गला.
0: ओके ओके, बियो कुछ?
2: हाँ बियो कुछ, बस हमारी कॉल लगी था.
0: हेलो ठीक है, पहन जो ख्याल रखो.
2: ओके अल्लाह हाफिज.
0: ओके अल्लाह हाफिज. इससे ज्यादा नहीं आती.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: नेटो इजलास में अचानक जो मूड न हो तुर्किया की मेजबानी सबब इतने आयो आया बेन मुल्क की भेट में तुर्किया अमेरिका से वफादार रो अमेरिका सदाई यूरोप के रूस का बचाया है यूरोपी मुल्क के बचाने लाय ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर तुर्किया मुझे करे इसराइल खिलाफ जंग में शामिल न थो तुर्किया चाहे हा तो इसराइल खिलाफ जंग में शामिल थी पे सको तुर्किया मजबूत वही फौज रखड़ मुल्क है तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान है अमेरिका का F-35 विराक जहाज वरता वा वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे वाले अज़म जो वर्जाओ काबीना इजलास में खिताब करते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो तो पाक फौज मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे लाए दी रात कम कर रही है मुल्क में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे वारो दी घणो परे ना है वज़ीर आज़म काबीना के ईरान और तुर्किया के दौरन बाबत भी एतमाद में वरतो शहबाज शरीफ चयो तो तुर्क सदर और सीड़पकारन सा मुस्बत मुलाकातू थी तुर्क सीड़पकारन पाकिस्तान में सीड़पकारी में दिलचस्पी दिखारी है बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस जो क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हिंदुस्तानी फितने जा 15 दहशतगर्द जनम भिड़ा सदर वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी घर वज़ीर पारां पुलिस चौकी से दहशतगर्द हमले की मज़म्मत सदर आसिफ ज़रदारी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की हर साजिश के नाकाम बनाए वो शहबाज शरीफ कंखे भी बलोचिस्तान के अमन के नुकसान पहुंचा न दींदी मोहसिन नकवी दहशतगर्दन जहा भुसलाना हमला अमन के खराब नथा कर सन बिलावल भुट्टो जरदारी पारा दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से भेटा पेश बिलावल भुट्टो जरदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाम बनाया वो सिंध काबीना सूबे में कणक की हथरादू खोट और अटे के अघ में वाध जो नोटिस वरतो कणक जखीरो कंदड़न अटो महंगो विक्रो कंदड़न खिलाफ कार्रवाई जो फैसलो वे वजीर मुआद अली शाह की सदारत हेठ सिंध काबीना जो इजलास वफाक पारा जोड़ियल कौमी कणक पॉलिसी से खदशा जाहिर पॉलिसी जो जायजो वे टिन सेक्रेटरियन से बदल कमेटी कायम सामुंडी पट्टी की निगरानी लाय सिंध फिशरीज सिक्योरिटी सर्विसिस नाले नव इदारो ठाण जो फैसलो सूबे में नई शुगर मिल्स के क्याम की भी इजाजत न डनी वी वादली शाह खुराक खातों पॉलिसी ठाण निगरानी करण गजाई तहफुज से ध्यान दिए अटे जो कीमतों मुस्तकम कर कार्रवाई कई वे जखीरो कंदड़न हारियन का कणक वी लिकाय छी है कणक जखीरो कंदड़न खिलाफ बिना मतभेद के कार्रवाई थी खुराक खातों सिंध पुलिस बेन इदारों से गड़ी कणक जखीरो कंदड़न खिलाफ कार्रवाई कह सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमण की सिंध काबीना के इजलास बाद ब्रीफिंग खुराक बारे वजीर मखदूम महबूब जमान है पाकि सरकार की कणक पॉलिसी से मुतफिक ना सिंध पैंजा वसीला कदी सिंध में कणक की हथरादू खोट पैदा कई पी वे कणक रुगो खाण जी जखीरो करण की इजाजत है बाकी कंखे भी कणक जखीरो करण की इजाजत न होंगी ज़रात वे वजीर मोहम्मद बख्श मेहर तो माहौलियाती तब्दीली सबब कणक की उपत घटी है पैंजी सही की इज्जत कयो धमकियों जारी रही तो गालू न थन्दू ईरान अमेरिका के खबरदार कर छो ईरानी परे वजीर अब्बास राक्षी है ईरानी अवाम के फौज के धमकियों से डिजारे न तो सकजे मुआदे की शिक नंबर 13 वाजे है धमकियों जो सिलसिलो जारी रो तो हतमी मुआदे बाबत गालू शुरू न थन्दू लखें ईरानियन के इतिहाद जहा मंजर अवान दिठा घट में घट पैंजी सही की इज्जत कर तेहरान का कुम पहुंचायल शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बड़े जो आखिरी रस्मों शुरू आयतुल्लाह जवादी आमली शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे नमाज पढ़ाई कुम में आखिरी रस्मों मुकम्मल थियण बाद शहीद आयतुल्लाह खामनाई के मड़ के इराक मुंतकिल कयो वेंदो कुम में सिक्योरिटी जा इंतजाम सा किर्गिस्तान के दौरे ते मौजूद सदर आसिफ अली ज़रदारी के मानवे तकरीब सादिर जियापा रऊफ सदारती महल पहुंचने से सदर आसिफ अली ज़रदारी की आजियां कई सदर आसिफ अली ज़रदारी के गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया सदर आसिफ ज़रदारी की किर्गिस हम मनसब से मुलाकात भी तरफन लागापन और व्यापारी सहकार के हथी डेण से इतफाक वकी काबीना साल 2027 खां 2030 ताईं 4 सालनि लाइ हज पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। इजलास खे आगाही ॾींदे ॿुधायो वियो त ही मुल्क जी पहिरीं 4 सालनि वारी हज पॉलिसी ऐं प्लान आहे। नई पॉलिसी तहत हज ऑपरेशन में बहितरी ऐं हाजियुनि खे वधीक बहितर सहूलियतूं ॾिनियूं वेंदियूं। हज जा ख़्वाहिशमंद हाणे साल 2030 ताईं रुगो हिकु भेरो ई रजिस्ट्रेशन कराए सघंदा। आइसोलेशन अस्पताल ऐं इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर इस्लामाबाद खे आउटसोर्स करण जी बि मंज़ूरी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का. और जी, एक अदल ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और वापस आने के बाद हमारा एक अदल सेगमेंट होता है जी, जिसका नाम होता है हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान. एवरी वेनसडे और थर्सडे को 12 बजे के बाद हम ये सेगमेंट कर रहे होते हैं. तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, जो कि हमारे साथ लाइनअप हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ऑन द कॉल, अगर मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊँ तो आज हमारे साथ मौजूद है जी मिस्टर शेख मोहम्मद आमिर यूसुफ साहब, जो कि हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद होंगे. सो इनको कहेंगे खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह.
0: जी शेख मोहम्मद आमिर यूसुफ साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम.
0: ओके जी, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में लाइनअप हैं, और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि हम नहीं जानते. सो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं ट्री प्लांटेशन एंड हीट वेव्स के ऊपर. तो आप मुझे बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो आज के टॉपिक के बारे में.
1: सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करूँगा कि ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है जिसको हमें समझना चाहिए. और हीट वेव इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है, और इतने ज्यादा हो जाता है कि कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं, और इसके लिए हमें एहतियात भी करनी चाहिए और इसकी प्रिवेंशन पे भी काम करना चाहिए. दूसरा ये कि हीट वेव्स की रीजन क्या है, जो टेम्परेचर इतना ग्लोबली वार्मिंग हो रही है, उसकी बेसिक रीजंस ये हैं कि दरख्त, जो कि हमारी लाइफलाइन कहूंगा मैं इसको, वो उनकी हम देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनको हम बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कागज बनते हैं, डिफरेंट चीजें हैं, दरख्तों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, उनकी कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन है. ये कुछ बेसिक वो हैं पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है.
0: बिल्कुल, अगर देखा जी जी जी जी कंटिन्यू कीजिएगा.
1: तो ये है सूरत हाल. इस पे हमें जो है, मतलब जो भी तमाम जिम्मेदारान हैं, जिनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनको इस पे काम करना चाहिए. और हम ज़ाती तौर के ऊपर इसमें क्या कर सकते हैं, इस पे मैं बात चाहूंगा कि हमें प्लांटेशन पे फोकस करना पड़ेगा.
0: बिल्कुल,
1: हमें अगर हमारे पास जगह मौजूद है तो हमें वहां पे दरख्त लगाने पड़ेंगे. दरख्त का मामला ऐसा है कि दरख्त लगाना भी सत्ता जारिया है, और हम बहुत सारे काम सत्ता जारिया के हवाले से करते हैं, तो हमें इसको भी एक फोकस करना पड़ेगा. हमें स्कूलों में बच्चों को इस रस्ते पे लाना पड़ेगा, इसकी अहमियत बतानी पड़ेगी. और अगर मैं जिक्र करूं कि माजी में कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, COVID-19 आया था, तो COVID-19 के अंदर जो प्रॉब्लम हुई थी, वो जिन लोगों को इस पे वास्ता पड़ा, उनको उस वक्त ऑक्सीजन का एक बहुत शॉर्टफॉल आ गया था हॉस्पिटल के अंदर, और इसकी वजह से
0: जी. आमिर यूसुफ साहब, आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन आ रहा है आपकी आवाज में, काइंडली इसको क्लियर कीजिएगा.
1: जी अब सही हो गया
0: जी, अब कुछ बेटर है, कुछ बेटर है.
1: तो ये जो ऑक्सीजन की अहमियत जो है ना, ये हमें COVID-19 में जो लोग इससे मुतासर हुए और जो हालात थे उस वक्त, वो हमें बहुत ज्यादा उससे सीखने को चाहिए कि हम ऑक्सीजन उस वक्त तो हमें खरीदने को भी नहीं मिल रही थी, अवेलेबिलिटी भी शॉर्ट थी, और ये दरख्त जो है ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ये ग्रीनरी, ये प्लांटेशन, ये सारी चीजें जो हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हैं, और हमें उनकी कदर उस वक्त पता चलती है कि जिस वक्त हमें एक सिलेंडर खरीदना पड़े और वो उस वक्त किसी भी कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल ना हो. तो अल्लाह ताला की ये नेमत है और ये फ्री है, तो हमें चाहिए कि हम इसमें जितनी ज्यादा پلانٹیشن کر سکتے ہیں, پودوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. ہماری یہاں پلانٹیشن ڈرائیوز ہوتی ہیں, سننے میں آتا ہے کہ جی اتنے ہزار اتنے ملین پودے لگیں گے, لیکن ان کی پھر دیکھ بھال نہیں ہوتی. سڑک کنارے, فٹ پاتھوں پہ, آئیلینڈز پہ میں ان کا پھر دھیان بھی کرنا چاہیے, ان کی نگہداشت کرنی چاہیے. وہ بھی جیسے انسانوں کا خیال رکھتے ہیں, بچوں کا خیال رکھتے ہیں, اسی طریقے سے پودوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے.
0: بالکل بالکل. اچھا اگر دیکھا جائے تو اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ اور بھی دوسرے ممالک میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت آسٹریلیا, تھائی لینڈ اور وہاں پہ بھی جو ہے گرمی کی وجہ سے روڈز وغیرہ پگھل رہے ہیں, اس وقت گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے کہ پاکستان میں اب کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں ہم, تو وہاں پہ درختوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں پہ ایسا کیا ایشو ہے کہ وہاں پہ بھی دوسری کنٹریز میں اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے, تو یہ ہیٹ ویوز اور یہ گلوبل جو بھی وارمنگ ہے یہ, اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا.
1: دیکھیں جو کچھ واٹس ایپ کے اوپر تصویریں آتی ہیں کہ جی کوئی پلاسٹک کی چیز میلٹ ہو رہی ہے یا سڑک میں پرابلم ہو رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حد تک اس کے اندر صداقت ہوتی ہے. اس لیے کہ ہیٹ, اب دیکھیں ٹیمپریچر کا معاملہ ایسا ہے کہ دو چار ڈگری بھی پڑتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. ایک ہمارے یہاں نئی چیز ہو گئی ہے کہ جی پریزنٹ ٹیمپریچر یہ ہے لیکن فیلنگ لائک کا ایک کنسپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے.
0: بالکل,
1: فیلنگ لائک اتنا,
0: یس.
1: تو یہ ایک چیز ہے. اب آپ درخت میں دیکھیں کہ درخت کے نیچے آپ کھڑے ہوں گے نا, دھوپ کے اندر بھی, تو آپ کو سایہ محسوس ہوگا. جب آپ سائے میں کھڑے ہوں گے تو کم سے کم 3 سے 5 ڈگری 6 ڈگری سینٹی گریڈ سائے کے اندر تپش کم ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے جو گرمی کی صورت حال ہے اس پہ فرق پڑے گا. اور آپ نے جو بات کری کہ گلوبلی یہ چیزیں آتی ہیں, تو اس کے اندر گرمی تو پڑ رہی ہے لیکن اس میں اتنی صداقت نہیں ہوتی کہ جی وہ دکھا رہے ہیں کہ جی گاڑی میلٹ ہو رہی ہے اور لائٹیں میلٹ ہو رہی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے, لیکن گرمی بڑھ رہی ہے اور اس کے عوامل جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں پولیوشن پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. اب دیکھیں ہم تو اے سی چلاتے ہیں, اندر بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے پاس کمرے میں ٹیمپریچر آ جاتا ہے 23, 24, 26, لیکن آؤٹر جو لگا ہوا ہوتا ہے یہ باہر گرمی بڑھا رہا ہوتا ہے, ایٹموسفیئر میں گرمی بڑھا رہا ہوتا ہے. سب کے آؤٹرز باہر لگے ہوئے, سڑکوں پہ لگے ہوئے, بلڈنگوں کے باہر لگے ہوئے, گھروں کے باہر لگے ہوئے, کمرے کے اندر تو کولنگ ہو جاتی ہے لیکن جو باہر, اس کی وجہ سے بھی جو ہے ٹیمپریچر انہینس ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے, اور پلانٹیشن ہی اس کا ایک واحد حل ہے, جسے کہا جائے کہ ایک چین بنی ہوئی ہے, اور بغیر پلانٹیشن کے یہ چیز کنٹرول نہیں ہو سکتی.
0: بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ہیٹ ویو کی جو شدت ہے اس میں مزید جو ہے ہر سال اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟
1: دیکھیں اس کی بیسک وجوہات یہی ہیں کہ نارتھرن ایریاز کے اندر درختوں کا کٹنا, اور پوری دنیا کے اندر, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس موضوع کے حوالے سے دیکھ رہا تھا, چائنا کے اندر انہوں نے 66 بلین درخت لگائے ہیں اور وہ بڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر کام میں تو بہت ڈیلے شروع کرتے ہیں اور پھر توجہ بھی نہیں ہوتی, اور ہر شعبے کے اندر ہمارے یہاں بہت زیادہ کمی کوتاہیاں ہیں, اور جو ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے کمپٹنٹ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں تمام شعبہ جاتی کے اندر, فارسٹ کو بھی میں کاؤنٹ کروں گا, یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے یہاں, اور پورے اس کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا ڈی جی بھی ہے, اس کا پورا ایک نظام ہے, لیکن فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے یہاں اتنا فعال نہیں ہے جتنا دنیا میں یا مہذب ملکوں کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی آتی ہے. تھوڑے دنوں میں آپ کو سننے کو آئے گا جی سیلاب آ گئے, تھوڑے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا جی کہیں پہ پانی کی سطح جو ہے وہ اتنی کم ہو گئی کہ بورنگیں سوکھ گئیں. تو ان ساری چیزوں کا, یہ قدرتی تمام معاملات کا جو ایک سائیکل ہے, یہ درختوں سے, پلانٹیشن سے آ کے کہیں نہ کہیں جڑتا ہے. جنگلات کا ایک سلسلہ ہے, آپ ناردرن ایریاز میں جائیے آپ کو وہاں پہ ایٹموسفیئر بھی ڈیفرنٹ ملے گا, آلودگی بھی کچھ کم ملے گی. تو एयर क्वालिटी का भी बहुत बड़ा इशू जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स के थ्रू है, तो इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा और इसके लिए हमें सरकारी सतह के ऊपर जो हमारे जिम्मेदारान हैं उनको उस वक्त से पहले कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी अराइज हो उससे पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर ट्री प्लांटेशन की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि गर्मी के मौसम में ऐसे कौन से दरख्त हैं जो लगाना ज़्यादा मौजू हैं?
1: देखिए, इस सिलसिले में दरख्त जो भी हैं वो एक दिन में नहीं लगते, उनको 2-5 साल लग जाते हैं इस नहज तक पहुंचने में कि जी वो आपको साया प्रोवाइड करें। सब्जियां 3-4 महीने में उग जाती हैं, उनको हम कंज्यूम भी कर लेते हैं। जहां तक दरख्तों की बात है, नीम का दरख्त है और सायेदार दरख्त हैं। अब हमारे यहाँ कराची में जामन है और दूसरे ऐसे दरख्त हैं कि जो नेचर से हेल्पफुल हैं और जो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इस तरीके से पुराने जमाने में बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे, बरगद के दरख्त हुआ करते थे। अगर आपको और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको बिल्कुल जिनका एमएजना रोड आना जाना है, बंदर रोड आना जाना है, मैं गुज़िश्ता दिनों बंदर रोड गया, वहां पे डेवलपमेंट की वजह से उन्होंने वो तमाम पुराने दरख्त जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान बनने के वक्त से लगे हुए थे वहां पे, अब इक्का दुक्का के अलावा कोई नजर नहीं आता, जबकि वो हमारा नेशनल एसेट्स थे। और उनको रिलोकेट करने के बजाय उनको काट दिया गया, उनको हटा दिया गया और एक एक दरख्त 40-40, 50-60, 70-80 साल उनकी उम्रें जो हैं उनकी, फिर वही ऑक्सीजन देने की सलाहियत भी उसी हवाले से होती है, साया देना। अब हम बाइक की पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग के लिए साया ढूंढ रहे होते हैं, हमें कहीं साया मैसर नहीं आता और हमने इतने पुराने दरख्त काट दिए। इसी तरीके से जो भी और दुनिया के अंदर जिनकी ट्रैवलिंग है वो भी इस बात को देखेंगे कि दुनिया के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे बनते हैं तो वो इतने पुराने दरख्तों को जो कि हमारा असासा है उनको रिलोकेट किया जाता है, उनको इस तरीके से लकड़ी का अंबार समझ के काट नहीं दिया जाता, जलाने के काम में नहीं लिया जाता उनको। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि इस पे हमें भरपूर तरीके से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहिए। और जो बचे कुछ ऐसे दरख्त हैं जो मेरे ख्याल में मेरी और आपकी उम्र से भी पुराने हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए, वो हमारा असासा है।
0: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, 2 मिनट है हमारे पास, तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जितने भी लोग जो हैं इस वक्त हमें सुन रहे हैं और गर्मी शदीद हो रही है, पाकिस्तान में हीट वेव्स जो है वो पड़ रही हैं, तो आप हमें बताइए कि आप लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर देना चाहेंगे हीट वेव से रिलेटेड?
1: देखें, हीट वेव्स की एहतियाती तदाबीर यही हैं कि ऐसे वक्त जब धूप बहुत ज्यादा हो तो उस वक्त जरा सा गुरेज करें, खास तौर से बच्चे, ख्वातीन और हमारे बुजुर्ग हजरात जो हैं, और घर से बाहर निकलें तो अपने आप को ढक के निकलें, पानी का इस्तेमाल अच्छा खासा करें, ORS का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हीट के वक्त, जिस वक्त हीट वेव की आप

0: अच्छा तमाम जो ख्वाब आए थे मुस्तकबिल में एक कामयाब
1: डॉक्टर ऑफ जा उम्मीद के दिए जलते हैं।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601100।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 AM to 5 PM तीन मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर याद रखंदा।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9600-51।
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न? अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मिरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मिरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

कीजिए, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक कहीजिए. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मैसेजेस और कमेंट्स और कॉल्स के थ्रू. वैसे अब हमारी सो हम लास्ट लकी कॉलर लेंगे 03000113488 के ऊपर, और नेक्स्ट कॉलर हम लेंगे लेकिन इस गाने के साथ.

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिब दंदल तमाम खूबसूरत मासूम सुने समात और खबूचे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुली दो के समंदर शादों की बारिश लासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत चांद से तारों तक गम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मरियारी सकरेन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम वाइट एशियन जी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और प्रोग्राम में आप लोगों के लिए जनाब वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं, हमेशा हसीन और पुरकशिश दिखना चाहते हैं, तो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए है। तो बिल्कुल क्या तरीकेकार होंगे और किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे सब कुछ बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन कितना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जी, अपना तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मुखातिब हो चुकी है और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, कैसे ही आपकी हालत हूँ, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है।

ठीक आपसे लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक तो मजे करेंगे ओके जी, बहुत ज्यादा वाले गाने होंगे मजे मजे के और साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप होगी और उसके अलावा आप लोगों के लिए वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बातें होने वाली है। तो बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदराली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगा से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ब्यूटीफुल सी नात के साथ। तो बहुत प्यारी सी नात हमारी लिस्ट में मौजूद है, हम ऐसा करते हैं कि नात सुनते हैं उसके बाद हम जैसे ही वापस आते बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी नात यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हो, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और अपने होने का एहसास आप किस तरह से दिलाएंगे वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन जो आज के प्रोग्राम का टॉपिक होने वाला है ना, तो वो सबसे पहले बता देते हैं। ओके जी, तो आज जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछना है वो थोड़ा सा ऐसा सवाल है कि उसके बारे में जो है ना, ये चीज मेरे जहन में आ गई थी कि मैं जरा आप लोगों से पूछूं कि इस मामले में देखा जाए तो आप लोगों का जहन क्या बोलेगा, आप लोग जो है वो इस टॉपिक के ऊपर क्या कहने वाले हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से कुछ इस तरह है, अल्लाह करी माजे को ना तवा की वो सवाल समझाए सका। ओके जी, तो ऐसा सवाल जरा यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप जरा मुझे बताइए, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारी नजर में हमें बड़े अच्छे लगते हैं, जब हम वो काम कर रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये जेको कम असा कयूं था, सफा परफेक्ट कयूं था, सफा भलो कयूं था, अगर उहो ई सेम कम को अगलो माण्हू ॿियो कंदो आहे ऐं असांजे ज़िंदगीअ में उहो माण्हू शामिल आहे, असां ॾिसूं था त बाबा ही माण्हू जेको आहे न उहो ई कम करे थो जेके असां पंहिंजे पास्ट लाइफ में करे आया, उन टाइम असांखे सही पिया लॻनि, साफ़ सुथरा पिया लॻनि, पर हिन टाइम हू माण्हू असांखे ग़लति पियो लॻे, ईअं छो? ये क्या इस चीज के पीछे लॉजिक है कि जो काम हमने कुछ टाइम पहले किया था वो हमें अच्छा सही सही साफ साफ लग रहा था, लेकिन अब के टाइम में अगला इंसान वही काम कर रहा है तो वो हमें गलत क्यों लग रहा है, वो तमाम चीजें हमें गलत क्यों लगती हैं, बताएं जल्दी से मुझे, मैं जानना चाहूंगी इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या कहना होगा, और अगर देखा जाए तो मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या कहते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और उसके अलावा जो है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे 8881 के अलावा फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है, और पेज पर आइए और वहां पर आकर जो है ना आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो के लाइव पोस्ट मिल जाते हैं, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ओके जी, तो अच्छे बच्चे बनकर हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दी जाइए, शेयर जरूर किया करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है, और साथ में लाइक भी कर दिया करें, वो भी दिल वाला रिएक्ट दे दिया करें। कंजूसियां यहाँ पर अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये सारे काम जो है ना मुफ्तम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इनके बारे में जानना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे तो यकीन जाने कि आप लोगों का जो दिल है ना वो गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाए कि हमारे लिए जो है ना वो कोई भी कंपनी ऐसे नहीं सोचती कि भाई हर तरह का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, या अगर आप ये प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो ये तमाम प्रोडक्ट्स एक ही जो है ना वो प्रोडक्ट्स के अंदर आपके लिए अवेलेबल हो जाए, तो हर तरह से जो है ना आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखा गया है, हर तरह से आप लोगों की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स है एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करने वाले हैं 03-1579-0595-3315-7995 ही असांजो नंबर आहे जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से पंहिंजे ॻोठनि में पंहिंजे शहरनि में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि तव्हां अवेलेबल कराए सघो था। ओके जी, सो टॉपिक मां अॼु अव्हां खां इहो पुछो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो पिया त असां जेको कमु कंदा आहियूं हिकिड़ो कमु, यानी कि इंसान पाण खे त जेको आहे न बहितर सम्झंदो आहे त मां असां जेको कुझु कयूं था सफ़ा सही कयूं था, असां जेको कुझु कयो मतिलबु थोरो टाइम पहिरियां, अॼु जी लाइफ में अगरि को ॿियो माण्हू उहो सेम कमु करे थो त उहो असांजे नज़र में ग़लति छो हूंदो आहे, इहो तव्हां अॼु बसि मूंखे ॿुधायो सवली सिंधी में। उन खां अलावा जेको आहे तव्हांजा मैसेजिस आहिनि ऐं तव्हां पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो, फ़हीम शेख हमारे साथ मौजूद आहे, वालेकुम अस्सलाम, इन मोला अलसलाम अदद, अदील खान वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम मोरो, बेना मुंहिंजे तरफ़ खां अव्हांखे मंझंदि जो सलाम क़बूल हुजे, अल्लाह पाक अव्हांखे हमेशह सलामत रखे, थैंक यू। चाचा खाले जुड़े जो आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बेटा, बिल्कुल ठीक ठाक है आपकी, आप बताएं आप कैसे हैं, और कहते हैं गर्मी की यहाँ लाड़काना में, कराची में तो थदकार आ, गर्मी इतने ठीक ठाक आ बस, और चाचा खालिद कहते ए मौत से बे शहर नहीं तुझसे शिकायत कोई, हम खुद ही दिलो जान की तबाही का सबब है, वाह वाह। फहीम कहते हैं छा हाल अहवाल आहे, सफ़ा छा को आयो, अॼु गानो ॿुधाए जो तव्हांखे अॼु हू वारो गानो ॿुधाईंदासीं, लॻे थो त बंगाली जादू आहे उहो वारो, ठीकु आहे। इमरान अली अब्बास की मेरे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम,
इमरान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। वासु भाई आ चुके हैं, हेलो वासु भाई। और दर्दे दिल आ चुकी हैं, वालेकुम अस्सलाम। चंदा जानी आप कैसी हैं? वेलकम टू शो। माशाल्लाह माशाल्लाह आ गई प्यारी आरजे, बिल्कुल आ गई है। आपको भी खुशामदीद। और मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आबाद से, खुशामदीद भाईजान। और जी शू आ चुके हैं, जी शू वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद आपको भी, भली करी आया। और दर्दे दिल क्या कहते हैं, दुआ लफ्ज नहीं, दुआ जज्बात का समंदर है जो अपने प्यारों के लिए निकलता है। और मेरी दुआ रब कायनात से कि आपको वो सब अता करे जो आपकी दुआ है, वो भी जो दिल में छुपी हुई ख्वाहिशात में है। और अल्लाह करीम आपकी नींद को फरहत, जागने को बरकत, आपकी नींद को

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेट पर. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मीरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं. आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए, समझ रहे हैं.

ओके जी, तो प्रोग्राम में तमाम तो सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जनाब, आप लोग जो हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। और साथ साथ जो लोग हमें साइलेंट होकर सुन रहे हैं, भाईजान, कभी कभी अपने होने का एहसास दिला दिया करें, अच्छी बात होती है। और जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं जरा आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ खूबसूरती को बढ़ाने की बातें। तो जनाब, बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि खूबसूरत होना जो है ना, वो हर किसी का एक ख्वाब होता है, सपना होता है। हर किसी को ये लगता है कि भाई मैंने भी खूबसूरत होना है। ज्यादातर देखा जाए तो हर कोई एक एक इंसान जिसको भी उठा ले, वो सारे लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बात यहाँ से बिगड़ती है कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं, आपको वो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते जो आपको लगाने चाहिए। तो भाई ये जरा जो चीजें हैं ना, आप धूप में काम करते हैं या फिर आपको सही वाले प्रोडक्ट्स की समझ नहीं होती, तो उस मामले में आपकी जो स्किन है ना, वो खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, आपको मैं बताती हूँ कि जनाब यहाँ पर जो आ चुके हैं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सबसे जो बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि इन्होंने ना आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल कराया है। जैसे कि आप लोगों को अगर नाइट क्रीम लगानी है तो नाइट क्रीम भी मौजूद है, फेयरनेस क्रीम लगानी है तो फेयरनेस क्रीम भी है, एक्नी प्रॉब्लम है तो एक्नी ट्यूब भी है, साबुन लगाना है तो साबुन भी है, फेस वॉश लगाते हैं तो फेस वॉश भी है। इतने सारे अच्छे अच्छे और हर तरह के प्रोडक्ट्स आप लोगों को वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मिल रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि आपको नाम आना चाहिए, नाम याद रखिएगा, ताकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं तो वहां पर आप नाम लेकर तलब करें। और ऐसा ना हो कि जब आप दुकानदार को बोलें कि भाई जान हमें वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ये फलां वाला प्रोडक्ट दे दें, वो आपको उल्लू बनाए, उनके पास ना हो अवेलेबल और कोई और आपको थमा दे, तो इस चीज से जरा गुरेज कीजिएगा। उन्हें बताइएगा कि हम स्कैम नहीं होने आए हैं जनाब, हमें पता है कि आपके पास अगर वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है तो हम वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके यहाँ अवेलेबल कराएंगे। और उसके लिए आपके पास नंबर है जो कि आप डायल करना चाहते हैं, तो जरूर डायल कीजिएगा, कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिए। उन्हें बताइए कि फलां जगह पर हम गए थे, फलां दुकान से हमने मालूम किया है और वहां पर वाइट एज के प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो डायल कीजिए 03-15-799-0595 बुड़ी 315-90-595 ही नंबर अथव जिते तुम राबो करें पांच करीबी जनरल स्टोर से वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल कराए सको था। तो हाँ गाल इतना स्टार्ट थे थी, तो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तुम इस्तेमाल करें चाहो था तक खबर ना थे तुम छो इस्तेमाल करना, तो वाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर तुम्हें थोड़ा बुधाई हलां, तो वाइट एश ब्यूटी क्रीम जी तुम्हारी खूबसूरती के मुताबिक तैयार थे है। और आपको ये लगता है ना कि भाई केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हम नहीं लगा पाती, हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, ये ब्ला ब्ला, तो आप लोगों के पास वाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है जो कि आप लोगों की सेंसिटिव स्किन के मुताबिक भी है। और ये फुल नेचुरल अज़ा से तैयार की गई है। इसके अंदर एवोकाडो आपको मिलेगा, मिल्क है, एलोवेरा है, वो तमाम चीजें हैं जो कि आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वाइट एश ब्यूटी क्रीम एक जदीद स्किन केयर प्रोडक्ट है जो आपके जल्द को ताजा, नरम और खूबसूरत बनाने में मदद देता है। इसमें शामिल है जनाब बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप लोगों की खूबसूरती को जो है ना वो उजागर करेंगी, खूबसूरती को बढ़ाएंगी और आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करेंगी। तो चाहे आप मर्द हजरात हैं, आप खवातीन हैं, हर कोई आप जो है ना वो बेफिक्र होकर वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है और वाइट एश ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप टीनेजर्स हैं, आपके चेहरे की स्किन जो है वो काफी डल हो चुकी है, आप चाहते हैं हमारे पास कोई अच्छी सी नाइट क्रीम हो लेकिन कोई बताता नहीं है, तो मैं हूँ बता दूंगी कि भाई आपके पास वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है और वाइट एश ब्यूटी क्रीम एक बहुत ही बेस्ट वाला ऑप्शन आपके पास होने वाला है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और साथ में आप इस्तेमाल कीजिएगा वाइट एश ब्यूटी सोप या फिर आप वाइट एश का फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाइट एश फेस वॉश की अगर मैं आप लोगों को थोड़ी बात बताऊं, तो वाइट एश का जो फेस वॉश है ना, ये विटामिन सी के साथ तैयार किया गया है जो कि आपकी स्किन को जो है ना वो ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए भी है और बहुत ही मस्त है जनाब, क्रीमी फेस वॉश है और इसके अंदर विटामिन ई भी मौजूद है। तो इतने सारे विटामिन के साथ साथ आप लोगों को ये जब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करने तो बनते ही हैं। और उसके साथ साथ अगर आप एक्नी की वजह से शदीद वाला परेशान है तो एक्नी को खत्म करने के लिए आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है जिसके अंदर जड़ी बूटियां ऐड की गई हैं, कोई भी केमिकल नहीं है, आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन किसी भी तरह की है तो आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा ना सिर्फ आपके चेहरे की एक्नी को खत्म करेंगे बल्कि आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं, जो कट होगा आपके चेहरे पर, कभी लग गया ऐसा कट जो कि नहीं खत्म हो रहा,
یا پھر آپ کے چہرے پر کوئی جلنے کا نشان ہے, وہ سب نشانات یا پھر ایکنی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب اویلیبل ہے. یہ آپ نام لے کر طلب کر سکتے ہیں, آپ کو ایزیلی مل جائے گا. اور یہ چھوٹو سا ٹیوب ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا, استعمال کرنے کے طریقے کار یہی ہیں کہ آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے سونے سے پہلے, اپنا فیس واش اچھے سے کیجیے گا, چنگے طریقے سے پانچ منہ کے دھو بابا, پانچ ہتھن کے بھی چنگے طریقے سے واش کرو, نہ کھپو جتے جتے تمہیں دانا آئیں, جتے جتے نشان آئیں, جتے جتے ایکنی آ, کچھ بھی آپ کہڑو بھی پرابلم آ, ان چیزوں سے لگائے کرے تاں سمے پاؤ پتا صبح جو پانچ فیس واش کرنا, تو تمہیں ایکنی میں فرق ہوں, تمہیں نشانات میں فرق ہوں, تمہیں جے پرابلمس آئیں وہ سب دور تھینا ویندا. وائٹ ایش پیوری کریم بھی تمہیں یہ لگائیں رات جو تمہیں سمن کا پہنی لگائیں پانچ فیس واش کرنا لگائے کرے سمی پوندا. ان کے علاوہ وائٹ ایش لولی کریم کے بارے میں اگر تمہیں بدھائیں, تو مطلب مخا پرسنلی کوئی پوچھے تو تمہیں جو وائٹ ایش میں کہڑو پروڈکٹ جو فیوریٹ ہے, تو اکھیوں بند کر بدائیں وائٹ ایش لولی کریم. وائٹ ایش لولی کریم سبب اصل بٹری دلوں آئیں, ایڈو زبردست پروڈکٹ ہے. مطلب مجھے ایکڑی خواہش ہے, ذاتی خواہش, مطلب ہٹ کے ہی اسپانسرڈ پروگرام نبی ہو جائیں تو مجھے زیادہ جو ایکڑی یا خواہش ہے ذاتی, تو وائٹ ایش لولی کریم جا ہی تاں سبنی کے ایک مرتبہ لازمی لگائیں گھرجے. وائٹ ایش لولی کریم جو اگر تمہیں جو خاص گالوں گڑھن سے وہار ہاں, تو تمہیں سوچیں تھا بابا ایکڑی پروڈکٹ کے اندر اتنی سب چیزوں کیسے تھی سکن تھیں, تو بالکل آئیں جناب. جو تو وائٹ ایش لولی کریم ریڈینٹ الٹرا وائٹمنس جو فارمولو ہے, جن کے اندر ٹری وائٹمنس جا کیپسول آئیں, ہر طرح جو تمہیں اندر وائٹمن ملی وی, تمہاری اسکن کے جن بھی وائٹمن کی کمی ہوں وہ پوری تھی ویسے. ان کے علاوہ ان کے اندر سنسکریم بھی ایڈ ہے, سنسکریم گولن تمہاری اسکن سے انجو میچ تھن ایڈو وڈو جو مشکل کم لگند ہے, چو تو ان میں تھی ایڈی ساری تھی ویئی ہے, ان میں تھی پانچ ٹائپ کی جو سنسکریم نہ ملی ہے. سو اگر تمہارے پروڈکٹ کے اندر ہی تمہارے حساب والی سنسکریم ایڈ تھل ہے, تمہاں جو پروڈکٹ ایڈو مست ٹھل ہے, تو تمہیں ایک دفعہ استعمال کرن گھرجے. وائٹ ایش لولی کریم کے اندر کوئی بھی ایج لمٹ کونے کو بالکل جی کوئی ایج لمٹ نہ ہے, یعنی کہ ان کے بار بھی لگائے سکن تھا, ٹینیجرس آئے ہو, تم ایجڈ آئے ہو, کراڑا مایوں, جوان, مرد, ہر کوئی لگائے سکے تھے. سو وائٹ ایش لولی کریم تمہیں گھر میں تو ہوجن ضروری ہے بابا, تمہیں کاری ونو تھا, پارٹی ہے, کو شادی ہے, کچھ بھی ہے تمہیں گھر میں, ایونٹ تم کم کیا تھا, کوئی جاب کیا تھا, تو ان صورت حال میں بھی تمہارے ہاتھ میں جو وائٹ ایش لولی کریم جو ہوجن لازمی ہے. چو تو جدید تم وائٹ ایش لولی کریم جو استعمال کرنا, بس تم پانچ فیس واش کرنا, وائٹ ایش لولی کریم اپلائی کرنا پانچ چہرے سے, ڈسندا تو بس تم ریڈی آؤ, بس مجھے کاری وٹھی ونو, یہ تاجی دل میں فیلنگ ہی. سو بالکل تم وائٹ ایش لولی کریم کے استعمال کر سکو تھا. لگائن جو طریقہ یہ ہے, تو اگر تم صبح جو لگاؤ, رات جو لگاؤ, منجل جو جی مطلب تاج دل چاہے تم لگائے سکو تھا, بس پان کے صفائی وی آئی پی وی آئی پی ڈسندا. ان کے علاوہ پانچ فیس واش پہ لازمی کجو, تمام پروڈکٹس ہیں جے تمہاں جی ہر اسکن کے مطابق تیار تھل ہیں. سو تمہاں لازمی ٹرائی کری ڈسو, تمہاں جی خوبصورتی ودھندی, تمہاں کے اوہ حسن ملندو جے کو تمہاں ہمیشہ حاصل کرن چاہیو پیا. سو بالکل تمہاں استعمال کیو. ان کے علاوہ ڈائل کیو 03-15-799-0595-4315-79-595.

मुझे वहाँ का सवाल पूछू है त मतलब सवाल थोड़ो तां समझो असा पांजे जिंदगी में खोड़ एड़ा कम कंदा आयो यानी कि पास लाइफ में अगते हली करे जको ना मतलब असा पेड़ा उए कम कया है ठीक है अगते हली करे ओ उए कम जके सेम असा पांजे जिंदगी में कया से अगर उही कम को बयो मानो करे तो असा जे सामू त असा के उही उन जा कम गलत लगन था ई छो असा कया से त ठीक हुआ ओ करे त गलत आ ई छो सामू के यू बुदायो व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा

ओके जी, सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और आप इस्तेमाल कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं मुझे बताइए जल्दी से। और हमारे साथ हेलो सिद्रा, कैसी हो? मैं अहमद मुस्तफा फ्रॉम मोरो। कोई शादी वाला सॉन्ग प्ले कीजिएगा, ठीक है? ये गाना आपके नाम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और हमारे साथ हैं जी इरम, कहती है प्यारी दिलबर दोस्त प्लीज प्ले मुमताज मुलाई तू पान मासो पारी। ओके, लगाते हैं आपके लिए। प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ फ्रॉम अहमदाबाद, वालेकुम अस्सलाम पाक आर्मी। स्वीट शो प्लीज दीबा सहर का कोई भी गाना अपनी पसंद का मैं लगाती हूँ जी। और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, क्या बात है। और हमारे साथ हैं जी कश्यप, कहती हैं सलाम आपी, आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून आपी। कल आप नहीं, वो ऐसी बात है कि जो मेरा 5 बजे वाला प्रोग्राम है ना, वो सिर्फ लाड़काना में चलता है। तो अगर आप सुनना चाहती हैं तो आप मुझे फेसबुक पर सुन सकती हैं, ठीक है? बाकी जो गाना आपने बोला है वो कल वाले प्रोग्राम में आपके लिए लगाया तो था, आपने नहीं सुना होगा। अच्छा, चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया चाचा, वेलकम करते हैं। ये मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान, केड़ा हाल है, तवाजा खुश आयो अदी। अवां जो आवाजी अंदाज मुखे डाढो पसंद आहे, शौक सा अवां जो शो बुधंदो आहियां अदी, 4-5 दिन खां। अच्छा चलिए, हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पा रहे थे। और कहते हैं कि मुझे भेण सॉन्ग जरूर प्ले करजो, सजादुल्ला जमाली, अली हैदर जमाली, अली गुल जमाली, विलेजर रईस, मोहम्मद हसन जमाली, शफीबाद नवाब शाह, प्लीज प्ले दिलशेर तेवणो, गुल जेड़ा सुठा माण्हू। चले भा, मां कोशिश कदम तव्हांजो गानो बुधंदासीं। रसूलाबाद से अब्दुल सिंह शंबानी भाई, वालेकुम अस्सलाम अदी। टॉपिक इस वक्त शऊर नहीं था तो अच्छा जो लग रहा था, अब बाशऊर है इस वजह से बुरा लगता है। अच्छा, मनैया गाल हुई। ओके, और ये है जाकिर हुसैन पंवर, अदी मुमताज मुलई जो गाना बुधरा जो हाजिर मुमताज मुलई हलाईंदासीं। वाह डेरी है सऊद डेरी फ्रॉम नवाब शाह, सलाम अदी शो तुम्हारा नाइस आए मोहब्बतूं भा, खुशामदीद। और ये हमारे साथ हैं कश्यप, कहती आप ही सिडो में भी वेट। अच्छा कहती मैं भी व्हाइट एश लवली क्रीम लगाती हूँ आपके कहने से, मत्ता न मन्ने मंजल आयो बाबा। दादू खा इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफातला जतोई, भांजू मोहब्बतू एंड प्रोग्राम बुधो पया, वेलकम।

0: मुजाहिद कहते हैं कि चापिक मुझे लगता है काम का सही वक्त होता है। हो सकता है जो काम हमने कल किया था वो ठीक वक्त था और आज उस काम करने का वक्त ठीक नहीं। अरे भाई यानी एकड़ी गाल आगे समझाया थी यानी कि असा एकड़ो पानी जिंदगी में कम कयो थे ठीक आ एकड़ी वो आसान चीज कई से वो असान के मतलब लगे पे उन टाइम ते असा सही आयो असा पांच जगह ते बेस्ट आयो अज जे टाइम में वो कम कोई बियो करे पयो वो सागो ही सेम कम तो वो असान के गलत छो पयो लगे यो पूछो तवा का। अच्छा साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम भाईजान। मोहम्मद ताहिर लुंड हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम से ठारजा से आप हमारे साथ हैं। बताएं जरा आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अच्छा उन अलावा वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स तुम अवेलेबल कराइंदा रहो तुम नंबर से राबो कर मुख्य या भी शिकायत मिली तो तुम नंबर से राबो ना था करो दसो ये ना क्यों बाबा ये ना क्यों नंबर से राबो करो कॉल करो उनके बुधायो तो फलान जगह से जो है वाइट एज का प्रोडक्ट कौन था मिलन अस लगान चाहूँ था तुम सो मेहरबानी करी अवेलेबल कराए छो सो अवेलेबल कराए छींदा तुम्हें डायल करो है 03-15-799-0595-1379-5 नंबर डायल करो टाइम थी न्यूज ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूं वापसी जल्दी मोटी तुम्हारी अचूँ था तुम कहीं नवजो ओ ही वही ओ ही मोटा थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड इन कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: ईरान में पंहिंजो कम मुकमल कंदासीं ईरान में पंहिंजो कम मुकमल कंदासीं ईरानी खतरनाक ऐं बीमार ज़हीन आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में ईरान सां जंगबंदी ख़तम थी वई आहे। ईरान सां ॻाल्हियूं वक़्त जो ज़ियान आहे। ईरानी कूड़ा आहिनि ऐं ॿिन्ही मुल्कनि जूं टीमूं चाहिनि त ॻाल्हियूं जारी रखी सघनि थियूं। अनकरा में नेटो सरबराह सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अमरीकी सदर ट्रंप चयो त ईरान सऊदी कतरी जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमरीका ईरान ते जवाबी हमला कया। स्पेन फज़ूल मुल्क आहे हाणे स्पेन को बि तालुक नथो रखणु चाहियां वापार बि न कंदुसि। स्पेन हाणे वापार लाइ मिनतूं करे रहियो आहे। असां सदाई नेटो जो दिफ़ा कयो पर ज़रूरत वक़्तु नेटो असांजी मदद लाइ न आयो। मां नेटो मां ख़ुशि न आहियां।

0: अमन मुआहदे बावजूद अमेरिका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। अमेरिकी सदर ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास ते हमले जी वीडियो बि जारी करे छॾी। ईरान जा बि अमेरिकी हमलनि बाद अमेरिकी अॾनि ते हमला। कुवैत ऐं बहरीन में बि अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिब अमेरिकी फ़ौज ईरान में 80 खां वधीक हदफ़नि खे निशानो बणायो आहे। ईरानी फिज़ाई दिफ़ा निज़ाम कंट्रोल नेटवर्क्स साहिली रेडार्स ऐं 60 खां वधीक ईरानी फ़ौज जे नंढनि ॿेड़ियुनि खे निशानो बणायो वियो आहे। हमला आबना हरमूज में बहरी जहाज़नि ते हमलनि बाद कया विया आहिनि। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त ईरानी हमलनि जे जवाब में अमेरिकी अॾनि ते हमला कया आहिनि। अमेरिकी हदनि में कुवैत में अली सालिम फज़ाई अॾनि समेत 85 हथनि खे निशानो बणायो वियो अली सालिम फज़ाई अॾनि समेत 85 हथनि खे निशानो बणायो वियो आहे। हिकु अमेरिकी ड्रोन बि तबाह कयो वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 03005569

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
4: आइए और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बात है जी, बताइए कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप लोगों को लगता है कि ये मुझे लगाना ही चाहिए. ओके जनाब, सो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे कितने शानदार से प्रोडक्ट मौजूद है. लेकिन उसके अलावा अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, जाहिर सी बात है जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को बताना, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो है ना आप लोगों के लिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और वो आप कैसे और क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए दो प्रोडक्ट्स अभी तक अवेलेबल है. एक डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और दूसरा डी स्किन फेस वॉश है. तो ये दोनों प्रोडक्ट्स ही आप लोगों की खूबसूरती के लिए. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भाई इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, तो क्यों वाला जो सीन है ना, ये जरा आप लोगों को समझाते हैं. अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसी वाली बात जो है ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. जिन लोगों की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, जिन लोगों के चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो जल्दी से सूट नहीं करता है, वो प्रोडक्ट उनकी स्किन के ऊपर सेट नहीं होता है और वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है. तो अगर आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और आपको भी कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता, तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है. और अब ऐसा नहीं कि ये सारे लोग ये सोचे कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये सिर्फ सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, नहीं, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है. इसे सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं जिनकी स्किन नॉर्मल हो या फिर सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ऑयली हो, ड्राई हो, हर तरह की स्किन जो लोग है ना वो सारे लगा सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर वाइटामिन बीट्स है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन के साथ तैयार की गई है, आपके चेहरे पर जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे की स्किन जो है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है. और साथ ही साथ आपकी स्किन जो है सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल में आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देना शुरू करेंगे. तो अगर आप भी अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे, तो भाई जान कब लगाएंगे, इतनी देर हो चुकी, लगाएं ना अब. और अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप ये सोच रहे हैं कि हमारे तो एरिया में नहीं मिल रही, तो अगर आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, आप नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहेंगे. और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को मजीद बताऊं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपके जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है. एक मयारी ब्यूटी क्रीम है जो जल्द को नमी फ्राहम करती है और चेहरे को नरम, मुलायम, तरोताजा रखने में भी मदद देती है. अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप बाकायदा करते हैं तो आपकी जल्द की बेरोनकी कम हो जाती है, चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाई देता है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो कि नेचुरल अज्जा हैं जनाब, जाहिर सी बात है आपकी जल्द को फ्रेश एहसास देने के लिए और खूबसूरती देने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर रोजाना आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपकी जल्द की जो कुदरती निखार है ना वो ज्यादा निखर के आ जाएगा और आपकी खूबसूरती जो है वो आप लोगों को वाज़ह नजर आना स्टार्ट हो जाएगी. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पर जो ये इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं इनका कोई सलूशन होना चाहिए, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके पास मौजूद है, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है और डी स्किन फेस वॉश तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा. डी स्किन फेस वॉश जो है ना ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का है, ये दोनों प्रोडक्ट ही आप लोग जब परचेज करेंगे तो आप लोगों को एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे. ये इतना प्रीमियम सा एहसास देते हैं, आप जब इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग खुद ही जान जाएंगे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपने डी स्किन फेस वॉश भी इस्तेमाल करना है. और डी स्किन फेस वॉश की बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है. तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश के अंदर मौजूद है. तो अगर आप भी कोई अच्छा वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, सेंसिटिव स्किन से परेशान हो चुके हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मरतबा जरूर लगा कर देखिएगा. ओके जी, सो यहाँ पर हमने डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश के बारे में तो आप लोगों को बताया और इसी के साथ साथ अभी जो है ना आप लोगों की हम कुछ कॉल्स पिक करेंगे, कल नहीं की थी तो आज करेंगे. ओके, सो आपकी कुछ कॉल्स में पिक करने लगी हूँ और अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा कॉलिंग नंबर है 1322 88 ये हमारा कॉलिंग नंबर है जो कि आप डायल करके हमें कॉल कर सकते हैं. तो कॉल कीजिए और उसके अलावा बताइए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं हमारा प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. ओके जी, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल आ चुकी है, देखते हैं फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
5: वालेकुम अस्सलाम.
4: केरा से सगर मौजूद है.
5: ओके
4: इमदाद भाई, खुश आयो, ठीक ठाक मजे में?
5: शुक्र अल्लाह,
4: अलहमदुल्ला ठीक आया. प्रोग्राम बुधो पे इमदाद भा बिल्कुल बिल्कुल तां काफी पुराना लिसनर आयो मुझा मुखे यो बुधायो तो टॉपिक बुधो तो वजी प्रोग्राम जो
5: सॉरी बेना टॉपिक न बुधी चाहियो आस्ता टॉपिक बुधायो दिता न कुर्बत दा न त वाइटे स्क्रीन दे काय तो यो फाजे तने असल में अवेलेबल ना है आसा बिकरे तने असल में अवेलेबल करा त मुजला नंबर हेल्पलाइन वगैरह जो
4: नंबर मा ता के बुधानी ता प्रोग्राम बुध जो ओके तां नंबर डायल कयो
5: जी जी बुधायो
4: 03
5: जी जी
4: 15
5: जी
4: 79
5: जी
4: 90
5: 90
4: 595
5: अच्छा 595
4: जी हाँ यो नंबर तां बुधायो मुखे वराए
5: 0315
4: जी
5: 83
4: जी अवेलेबल करायो बियो छा चवण चाहिंदा चलो शेला गुल जो तव्हांखे भलड़ो गानो ॿुधायां थी दोस्तनि खे यादि कंदा
5: ओके
4: थैंक यू सो मच इमदाद भाई हमारे साथ.

0: GAFM 88 Network सिंध की आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896

0: ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے کے لیے ڈاکٹر حسین میمن، مینیجنگ

0: Center Mazar School System 03000002724 Nisar Ahmed Memon Principal Mazar School System Mehrapur 03013865453
1: Assalamu alaikum ada
2: Wa alaikum assalam ada chho pareshan ahi
1: ada nau dukan kholyo tam par halei na to cha kaje
2: ada dukan ji mashauri karai thai
1: na ada
3: yaar aaj kal sharan tode gochan mein ji mera par fm 94 hi hale tho mo panjo dukan kholyo to fm mera par te publicity karai karobar ehdo kamyab ho jo aid band karan te dilli nathi chave
1: mujhe dukan ji be darandi
2: ha da karobari ishtiharat aam itla milad majlis salgirah ji mubarak matlab har kisam ji advertising halandi
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी है मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस कहानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में. अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने स्टार्टिंग से लेकर हमारा शो सुना या फिर अभी अभी आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं. बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. ओके, सो बहुत से लोगों के जो कमेंट्स है वो ऊपर भाग चुके हैं, तो जिनको लगता है कि ये वाला कमेंट मेरा रीड नहीं किया है सदरा ने, तो वो काइंडली दोबारा मुझे शेयर कर दीजिएगा ताकि वो शामली प्रोग्राम हो सके. और इसके साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए. और बताइए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा रहे है या सिर्फ हमारा शो सुन रहे है? हाँ हाँ हाँ, बताओ. ओके, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में डी स्किन फेस वॉश है, आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले? मैं तो चाहूंगी कि भाई दोनों चीजें साथ में लगाइए, क्योंकि फेस वॉश तो भाई जाहिर सी बात है हर कोई लगाएगा, ये जरूरी एक चीज होती है. और क्रीम लगाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि डॉक्टर्स से जो है ना, ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है, जो कि आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट. फिर ऐसा है ना कि अगर आप इन्हें परचेज करेंगे, लगाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि आप वाकई कोई प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार किया गया है, तो इसे आप जरूर ट्राई करके देखिएगा. लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं, तो लगाइए और खूबसूरत हो जाइए. ओके जी, अली मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं प्यारे भाईजान को. राशिद जाफरी हमारे शो सुन रहे हैं, भाईजान को खुश आमदीद कहते हैं. और किशोर भाई कहते हैं जी जी सच्ची, बस आप निदड़ी की पुप्फो जैसी मत बनना, मेरी पुप्फो जैसी बनना. बिल्कुल जी, मैं अच्छी वाली पुप्फो बनूंगी. अच्छा, ए मंसारी कहते हैं टॉपिक पर हम सफाक माइंड के लोग खुद को दूसरों पर फोकियत देने के लिए करते हैं, लेकिन बात असल में ये होती है कि हमें मुंह की लगी हुई होती है.

ओके जी, नितली कहती हैं चलें जी, क्या बात है आपके कहने की। और दीदार अली बिरोही हमारे साथ मौजूद हैं। बिरोही गाना सुनना चाहते हैं, चलें मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना लगाएंगे। नजर कोसों में सुन रहे हैं बलोचिस्तान सांस से खुशामदीद भाई लिखते हैं, अगर इंसान की इज्जत करें चाहे उसका ताल्लुक किसी भी तबके रंग या नस्ल से हो, मर्तबे और पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, किरदार से बड़ा होता है। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर कर दी है, लेकिन आज के जमाने में ये सब चीजें मुझे लगता है कि मैटर करती हैं, और मुझे ये भी लगता है कि नहीं करनी चाहिए लेकिन क्या कर सकते हैं, एक इंसान के कहने से और एक इंसान के सोचने से पूरी दुनिया तब्दील नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक इंसान एक अच्छी सोच रखता है, एक इंसान सोचता है कि भाई मेरी इस अच्छी सोच से अगले इंसान के साथ जो है ना वो अच्छा जो बिहेव करना चाहिए, तो ऐसे अगर आप कोशिश करेंगे तो एक एक इंसान मिलकर जो है ना वो कोशिश करे तो बहुत सारे लोग अच्छे बन सकते हैं दुनिया में। तो आप कोशिश कीजिए, अगर यही सोच हमारी रही कि भाई अगले इंसान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो हम अच्छा क्यों करें, तो इस सोच को लेकर अगर हम चलेंगे तो भाई जान दुनिया तो वैसे ही बहुत बुरी है।

ओके जी, पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो था उन खां अलावा जी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड जी स्किन फेस वॉश लगायो पया कोन बुधायो त सही अनवर भाके दे टॉपिक जेको कम असा कंदा आयो सही लगंदो आ ओई कम बियो केर कंदो आ त मानु उन के इग्नोर कंदा आन हर के जी पांजी पांजी सोच आ है इग्नोर नन कंदा सिद्धो चवन आन त ही गलत करे पयो जुल्फकार अली कारती हो हमारे साथ मौजूद है मदीना मुनव्वरा से आप हमारा शो सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच अच्छा गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम जबरदस्त प्रोग्राम थैंक यू गुलाम मोहम्मद मरी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम सिद्रा भी क्या हाल है आपकी आपका शो सुन रहे हैं नाइस आवाज एंड नाइस शो रुखसार मरी फ्रॉम मीरपुर खास ओके जी आपको वेलकम करते हैं ओके जी यासीन खंड हमारे साथ साथ हैं शहर लखरोड यासीन खंड आप कैसी हैं बहुत दिनों के बाद आपका शो सुन रहा हूं बहुत शुक्रिया जी आपको वेलकम करते हैं चाचा खालिद कहते हैं ना मंजिल है ना मंजिल का निशा है कहां पे ला के छोड़ा है किसी ने हाय हाय ओके जी रिजवान गांगरो हमें सुन रहे हैं हेलो

अच्छा बिलाल अली आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बिलाल, कैसे हैं? ओके जी, लिखते हैं आज कोई भलड़ो गानो बुधाए जो शायद बबर जो लगे तो तव्हां शायद बबर जा फेन आयो। मां कोशिश कयां थी टाइम बची त हलायूं था तव्हां जे लाइ, न त 5 बजे वारी प्रोग्राम में हलाईंदासीं। और मोहम्मद ताहिर लंडू भाई तव्हां असां सां गॾु मौजूदु आहे। आबिद अली हमारे शो सुन रहे, हाय। मोहम्मद साले लगारी हमारे साथ हैं, सांगड़ से आप हमारे साथ साथ, खुश आमदीद। अच्छा अॼु कॉलर्स जेके न कुझु नवां नवां बि शामिल थिया, न त मूंखे इहो लॻंदो आहे त अगरि मां तव्हांजूं कॉल्स वठंदी आहियां त कुझु इहे 4-5 माण्हू आहिनि कॉलर जंहिंजी कॉल लॻी वेंदी आहे ऐं डेली बेसिस ते उहे कॉल कंदा आहिनि, त अॼु कुझु लॻो त बाबा थोरी चेंजिंग हुई। ईअं हुजे त बहितर आहे न, ईअं अगरि जेके माण्हू कॉल कनि था, हिकिड़ो ॾींहुं तव्हां कई वरी 2-3 ॾींहं तव्हां सबर कयो त उन्हनि माण्हुनि खे बि मौको मिली वेंदो जेके माण्हू कॉल करणु चाहिनि था। की उन्हनि माण्हुनि जी वजह सां उन्हनि माण्हुनि जी बि कॉल न लॻी सघंदी आहे जेके वीचारा सालनि खां कोशिशि कनि था पर उनजी कॉल न लॻी सघंदी आहे। सो रोज़ रोज़ ॻाल्हाइण खां बहितर आहे त थोरो तव्हां मतिलबु स्पेस ॾेई करे पोइ ॻाल्हायो, जीअं सभिनी जूं कॉलियूं प्रोग्राम में लॻंदियूं रहनि। पर इहा चीज मूंखे लॻंदो आहे मां तव्हांखे समझाईंदे समझाईंदे मां मतिलबु जेको आहे त कुराड़ी थी वेंदमि, पर तव्हांखे ॻाल्हि समुझ में न ईंदी। एतिरनि सालनि खां समझायां थी पर को असरु कोन थियो आहे।

भई ना भला भला गाना फरमाइश तमा छो कंदा आयो बुधायो मुके ओगरी सुकड़ो वो गानो आसन जी लिस्ट में वो भी बुधनासी बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं वाइटेश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो अगर आप भी वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल जी बताइए और साथ साथ वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को पता है कि वाइटेश ब्यूटी क्रीम मिल रही है और वाइटेश ब्यूटी फेस वॉश मिल रहा है तो ये दोनों प्रोडक्ट्स अभी जो है ना वे तैयार किए गए हैं तो अगर आप नाइट क्रीम कोई अच्छी सी लगाना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए है और कोई अच्छा सा फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन फेस वॉश आपके लिए मौजूद है जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है क्लीन करता है और हाइड्रेट रखता है तो इतने जबरदस्त इतने शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद है तो फायदा उठाइए ना इस्तेमाल कीजिए।

अच्छा नन्ना एसन हाने याद थी वयो हाने कोन विसरंदो आबिद अली हमारे साथ हैं. आबिद अली कहते सलाम दो मेरे दोस्त जीशान को. ओके सो जीशान को सलाम हो गया आपकी तरफ से. और बिलाल कहते हैं कि सारी दुनिया आपके सामने मोहब्बत की दावेदार खड़ी हो मगर आपका दिल पिघलता मनपसंद शख्स की मौजूदगी से है, चाहे वो रुख फेर के खड़ा हो या दिल तोड़ के खड़ा हो. आईली या सही गाला मनपसंद शख्स जी अगर सारी दुनिया जगह बेकार लगन दिया.

अच्छा फहीम, ये मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग जो आपको वाकई मैसेज करें, ये हर नए आने वाले लिसनर्स के साथ जो है ना वो कुछ लोग करते हैं ताकि वो प्रोग्राम में आना बंद कर दे. तो ये कुछ ऐसे लिसनर हैं जिनको पता नहीं क्या है मेरे प्रोग्राम से कि वो जितने भी कोई नए लिसनर आते हैं या वो अच्छे वाले लिसनर होते हैं ना जो अच्छा मतलब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं, तो उसको जाके ना वो मैसेज करते हैं कि भाई मत करें आप उसके शो में मैसेज, तो पता नहीं ये क्या है. आप उन तमाम लोगों को बस ब्लॉक कर दें, इग्नोर कर दें और आप प्रोग्राम में आया करें. अच्छा हमारी प्यारी दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद कहती, चंदा हम खुद को सही समझ रहे होते हैं मगर हम होते गलत हैं, जब कोई और ये काम करता है तो वो हमें गलत लगता है. ओके लुबी आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम कहती, सिडो जानी क्या हाल है, मे भी आपके साथ साथ नाइस यो सिडो. आज कराची का मौसम बहुत अच्छा है और साथ में घूमने भी जा रहे हैं आज, क्या बात है जी, घूमी घूमी करिएगा, एंजॉय कीजिएगा. और फजीला सिंधी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, क्या कहती हैं भाई. आप जानती हैं कि आपकी जो सिदरा है ना ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है तो फजीला आपको बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और खुश रहें.

बिल्कुल जी, तव्हां पाण दुनिया खे छॾे करे अगरि अच्छा थियणु चाहियो था त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु लाज़मी कजो। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा पोइ तव्हां अच्छा थी वेंदा, वाक़ई अच्छा, सम्झो था। ओके जी, आशिक खास के लिए मैं सुन रही हूँ वालेकुम अस्सलाम भाई को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। अच्छा चाचा खालिद कहते पुफो मिठाई शुगर फ्री खपे, आईली चाचा मिठाई खाईंदा। मां मिठाई जेतिरी शौक़ीन आहियां तव्हां जे सॼी बि मां खाई छॾींदसि। आमिर खान भाई सर हमें सुन रहे हैं, हेलो। अच्छा कुर्बान अली कमरानी भाई वालेकुम अस्सलाम, दादू से आप हमें सुन रहे हैं। और किशोर भाई कहते हिकड़ो पूरो डी कॉल के डे 7 मिंट में घणियूं कॉलियूं लगंदियूं, कुछ तू भी समझ आ, तोखे समझाए समझाए कुराड़ो थी वेंदसि। हाँ मां सोचींदी आहियां त वाकई ईअं कीअं हिकड़े ॾींहुं सॼियूं कॉलियूं वठां, वरी ॿिए ॾींहुं सॼा मैसेज पढ़ां, वरी टे ॾींहुं सॼियूं कॉलियूं वठां, वरी चोथे ॾींहुं सॼा मैसेज पढ़ां, ईअं कयूं जीअं चओ। अच्छा ये तो आप जानते हैं कि हमारा ये जो प्यारा प्रोग्राम है इसके लास्ट लिंक में हम सुतल गाना बुधंदा आयूं, सो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके मार्केट में अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल तो डायल कर रहे हैं 03-15-799-05 और 95, ये नंबर है जो कि आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा सकते हैं। नंबर सिंधी में भी ॿुधायां थी, जेके माण्हू असांजा थोरा मासूम आहिनि जेके सिर्फ़ सिंधी सम्झंदा आहिनि उन्हनि खे नंबर सिंधी में ॿुधायां थी, त नंबर आहे 2315-79-595।

0: ओके जी, नदीम अली शेख हैं फ्रॉम विलेज भेरू से। आप ही सदरा प्लीज प्ले अहमद मुगल। अच्छा भा मां कोशिश क्या थी हली वे तो हलाईंदासी न त सुभाणे बुधंदासी। अरीबा कह दी आप ही चले जी, कोई बात नहीं। और शोनी क्या कहती है?
1: एक ही प्यारा
0: शोनी, माहौल का जो ना वो थोड़ा सा फर्क होता है और आप ये चीज थोड़ी जहन में रखा करें। अच्छा किसी का पैनल पर खाली भी मैसेज आ गया तो जिसका ना पढ़ूं तो समझ जाइएगा। और फहीम शेख हैं हमारे साथ। अच्छा नदीम अली शेख भी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच, भाइयों को वेलकम करते हैं।

कहोगे जी अल्ताफ बलोच जाग जाने चाचू हमारे साथ मौजूद एक प्रोग्राम में कहते हैं अनवर विस्तरो का गाना सुनाइएगा और डेडिकेट किया है आपने अज्जा खोसो और जोजी बलोच एंड मी सो। थैंक यू सो मच, आपको खुश आमदीद करते हैं।

की फौजिया सुमरो का गाना सुनना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो ये गाना उन सबको डेडिकेट जाता है। और उसके अलावा टी स्किन प्योरी क्रीम जो जो लगाना चाहते हैं तो टी स्किन प्योरी क्रीम आप लाजमी लगाइएगा। और उसके अलावा ए एम अंसारी कहते हैं कि हम तुम्हें समझते ही नहीं, मध्य मुकाबल अपना, तुम फजूल में बने फिरते हो मुखालिफ मेरे। क्या

ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ओगरी सो यहाँ पर हमारे जाने का वक्त ही बिल्कुल करीब आ चुका है और आप लोगों से इजाजत लेते ही वरी इसला तमाम से मुलाकात चिकाए हुआ मुझे थी इंदी पंजे बजे वारे प्रोग्राम में। सो पंजे बजे वारे प्रोग्राम में लूं था सो पांजो ओ हिरु सर खया रखना। आई अगर किथे का गलती थी हुजे मुखां त माजरत कयूं था, जिना सॉन्ग्स रेजी वया, जिना फीडबैक रेजी वया, त सबनी का माजरत कयूं था। सो मुकलानी नाही बाबू, सिन सलामत, सा सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू ऑल।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आई थिंक इट्स ओवर। आई डोंट वांट टू डील विद देम एनीमोर। दे स्कम। यू नो व्हाट स्कम इज? दे स्कम। दे सिक पीपल। एंड इफ दे हैड अ न्यूक्लियर वेपन दे यूज इट। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्नड इट्स ओवर। आई विल स्पीक टू हर। दे हैड अ न्यूक्लियर वेपन दे यूज इट। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्नड इट्स ओवर। आई विल स्पीक टू हर। नेगोशिएटर्स दे वांट टू नेगोशिएट। दे गुड पीपल। स्टीव वुडकॉफ, जेरेड कुश्नर। But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the president. We never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
2: मुझे ख्याल में ईरान सा जंग बंदी खत्म थी चुकी है। ईरान सा गालियों वक्त जिया आहिन। ईरानी कूड़ा ज़हनी बीमार आहिन। टीमू चाहन थियूं तो गालियों जारी रखी सकन थियूं। ईरान में पंहिंजे कम मुकमिल कंदासीं। इंफ्राम में गालाईंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान बहरी जहाज़न के निशानो बणायो आहे। अमेरिका जवाबी हमला कया। स्पेन फजूल मुल्क आहे। तालुक रखण नथो चाहिया। सदाई नेटो जो दिफ़ा कयो। ज़रूरत वक़्त नेटो मदद लाइ न आयो। नेटो मां ख़ुशि न आहियां।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 91 896

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

28 फरवरी 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांदवा में पैदा हुए आपके वालिद कपड़े के ताजिर थे, जो मतवसत तबके से ताल्लुक रखते थे। वो पैदाइशी लीडर थे। शुरू से ही अपने दोस्तों के छोटे छोटे काम और खेल तमाशे करने पर हौसला अफजाई करते थे। जब उनकी माँ उनको स्कूल जाते वक्त दो पैसे देती, वो इनमें से एक पैसा खर्च कर लेते, एक पैसा किसी और जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के लिए। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ की देखभाल का काम संभाला, जो शदीद किस्म की ज़ियाप्तीस में मुबतला थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने से पहले दूसरों की मदद करना सीखा और जो आगे की जिंदगी में इनके लिए कामयाबी की कुंजी साबित हुआ। 1947 में तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आया, कराची में आकर आबाद हुए। 1951 में आपने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खरीदी। इसी दुकान में आपने एक डॉक्टर की मदद से छोटी सी डिस्पेंसरी खोली, जिन्होंने इनको तिब्बी इमदाद की बुनियादी बातें सिखाई। इसके अलावा आप अपने यहाँ अपने दोस्तों को तदरीस की तरफ भी रागिब किया। आपने सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाया और डिस्पेंसरी के सामने बेंच पर ही सो लेते, ताकि वक्त ज़रूरत फौरी तौर पर मदद को पहुंच सके। 1957 में कराची में बहुत बड़े पैमाने पर फ्लू की वबा फैली, जिस पर ईदी ने फौरी तौर पर रद्द अमल किया। उन्होंने शहर के नवाब में खैमे लगवाए, मुफ्त मदाफियती अदवियात फराहम की। मुखैर हजरात ने इनकी दिल खोल कर मदद की और इनके इन कामों को देखते हुए बाकी पाकिस्तान ने भी इमदादी रकम से उन्होंने वो पूरी इमारत खरीद ली जहाँ डिस्पेंसरी थी, और वहाँ एक जिंदगी के लिए सिलेंडर और नर्सों की तरबियत के लिए स्कूल खोल लिया, और यही ईडी फाउंडेशन का आकाज था। आने वाले सालों में ईडी फाउंडेशन पाकिस्तान के बाकी इलाकों तक भी फैलती गई। फ्लू की वबा के बाद एक कारोबारी शख्सियत ने ईडी को काफ़ी बड़ी रकम की इमदाद की, जिससे उन्होंने एक एम्बुलेंस खरीदी जिसको वो खुद चलाते थे। आज ईडी फाउंडेशन के पास 600 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज है, जो मुल्क के तूल और अर्ज़ में फैली हुई हैं। कराची अंदरूनी सिंध में इमदाद के लिए वो खुद दाल रवाना होते हैं, और ईडी फाउंडेशन की हादसात पर रद्द अमल की रफ्तार खिदमात म्यूनसिपल की खिदमात से कहीं ज़्यादा तेज़ और बेहतर है। हस्पताल एम्बुलेंस खिदमात के अलावा ईदी फाउंडेशन के क्लिनिक, जिज्जगी घर, पागल खाने, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज, पना गए, स्कूल खोले, और इसके अलावा ये फाउंडेशन नर्सिंग घरदारी के कोर्स भी करवाती है। ईदी मराकज की खसूसियत यह है कि हर ईदी मरकज़ के बाहर बच्चा गाड़ी का एहतमाम होता, ताकि जो औरत बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर जा सके, और उस बच्चे को ईदी फाउंडेशन अपने यतीम खाना में पनाह देती है। इसको मुफ्त तालीम फराहम

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक

पास नस्त रेलवे लाइन मेहरा पर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।

0: जो कि हमें बताया है अदा गुलाम। वो कौन सी चीज है जिसकी कोशिश करने वाले को सजा है मगर कर लेने पर नहीं?
1: कोई नहीं।
0: वो कौन सा काम है जिसके कोशिश करने वाले को सजा है मगर काम कर लेने पर सजा नहीं? इस सवाल का जवाब मालूम है तो आपने डायल करना है 03136156888। आपकी नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद आजम अस्करम भी खास है।
0: वेलकम कहेंगे अंकल आपको, आपने गाना सुना?
2: जी जी, बड़ी मेहरबानी। आपने आंसर पूछा है,
0: सॉरी क्या बताया आपने?
2: खुदकशी।
0: चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, थैंक यू। ओके जी, हमने पूछा आपसे वो कौन सा काम है जो करने वाले को सजा मिलती है और हो जाए अगर वो काम तो उसकी पनिशमेंट नहीं होती है, तो जनाब सुसाइड यानी खुदकुशी। और इस सवाल का आंसर हमें बताया है मीर प्रकाश से आजम अंकल ने। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट सवाल

0: माई।
1: अच्छा जी एक और सवाल, खाता नहीं ना पीता बातें करके है जीता, खाता नहीं ना ही पीता और बातें करके है जीता, आपने बताना है क्या जवाब है इस पहेली का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आदा अजीज, वेलकम कहेंगे आपको, क्या जवाब है हमारी पहेली का? राइट आंसर है, अरे वाह, बहुत शुक्रिया आपका आदा अजीज। जरवार भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और हमेशा जो है आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत शुक्रिया, आपने दुरुस्त जवाब दिया। और जनाब रेडियो है इसका राइट आंसर, ना ही ये खाता है ना ही ये पीता है बल्कि बातें करके जीता है। चलें जी, जवाब तो आपके जो है हमें काफी हद तक दुरुस्त मौसूल हो गए, ऑल टू ऑल।

नहीं अस्मा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है. 10 से 15 साल हो गए रेडियो करते हुए, तो अब मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ. मुझे प्रोग्राम करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती. बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, बहुत शुक्रिया आपका. और ढोल, ये आंसर अस्मा ने भेजा है, ये भी राइट आंसर है. ओके, बहुत शुक्रिया अस्मा. और जनाब, यहाँ पर छोटा सा वक्फा है, ब्रेक के बाद अगेन ज्वाइन करते हैं अपने तमाम सामीन को.

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

अस्सलाम वालेकुम बाजी गुलनाज लो, लॉन्ग टाइम के बाद आपके शो में एंट्री की है, एंट्री कबूल करना। जलोरी गांव मैं दली उत्तरादी, सलाम खालिक लाचारी अजीज जरवार कुर्बान खास के लिए और चोवन कुमार आपने कहा शमन ओके भलीकार चो था दवा के भी, ये भी हमारे ओल्ड लिसनर है उमैद अली उत्तरादी। बहुत अच्छा लगा आप शामली प्रोग्राम हुए, थैंक यू। और सवाल पूछा था वो कौन सी चीज है जो है तो आपकी जिसे इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं, तो वो नाम है, आपने यहाँ पर अपना नेम नहीं लिखा, आंसर तो भेज दिया मैसेज में, अपना नाम लिखना भूल गए, बहुत शुक्रिया आपका। आप आई थिंक जुल्फिकार अली हैं, ये वैसे मैंने जो तुक्का लगाया नहीं, अल्ताफ अली गादी बलोचे हैं। अच्छा जी, आपका आंसर राइट है। और बाजीगुल क्या हाल है, आई एम फाइन। जलोरी सुमैद उत्तरादी, सलाम अक्सा यास्मीन रंजन फरहान कोरी गफूर अंकल आकिब लशारी एंड यू, वालेकुम अस्सलाम सेम टू यू, थैंक यू। और अल्ताफ अली गादी बलोच, सेकंड आंसर भी आपका राइट है। बहुत शुक्रिया आपका, आप शामली प्रोग्राम हुए और

और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बाद हुआ, उस दिल की झील सी आंखों में एक ख्वाब बहुत बर्बाद हुआ। जी हिजर हवा भी दुश्मन है उस नाम के सारे रंगों की, वो नाम जो मेरे होंठों पर खुशबू की तरह आबाद हुआ। इस शहर में कितने चेहरे थे कुछ याद नहीं, सब भूल गए। एक शख्स किताबों जैसा था वो शख्स, जब हुआ

0: GAFM Network KTN News.
1: इंकलाब जंग में पाकिस्तान के कुर्बानन के कदर की नजरन से ऊँ था दादू में सिंध इलेक्शन कमेटी की मेजबानी हेठ कौमी कॉन्फ्रेंस सियासी समाज अगवान शिरकत कराची के वफाक हवाले करने वाली साजिश रद्द मुआदे मूजिब पानी देने का मुतालबो सूबे में थियल करप्शन की भी अणधुरी जांच कराने का मुतालबो अगवान के नौकरियों को वेकरो बंद कर नौजवान के मेरठ से रोजगार दिनों वे प्रिया कुमारी बिन अगवा थियल मासूम बारों के बिना देर आजाद कराया वे सूबे में अमन अमान भी बहाल कराया वे असी सिंध वासी जातिन कबीलन में विरायल आयो पर दरिया के मामले ते सब गड आयो शिकारपुर में मीडिया से गलाइंदे जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो चवात बिलावल आसफा बख्तावर से रत जो रिश्तो है कदें भी मतन तनकीद ना कई बिलावल बख्तावर आसफा पान में को भी फर्क न तो समझा इंसानियत के अलमबरदार अब्दुल सत्तार रिदी के विछोड़े के 10 साल मुकम्मल सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा अब्दुल सत्तार रिदी के भेटा पेश सदर आसिफ जरदारी चो तो अब्दुल सत्तार रिदी खिदमत खल्क इंसानियत जो रोशन मिसाल हो इंसान की खिदमत वालों दर्द सदाई रोशन रहो वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो अब्दुल सत्तार रिदी जो सियासी समाजी खिदमतू रोशन बाब आन नौजवान नसल के रिदी के किरदार में सीखने घुर्जें।

0: अमेरिका ईरान जी एक बे ते हमलन बाद चीन ए कतर मुफावत लाए सरगर्म है बिन्हीं मुल्कन जो धुरियन का हमला रोकण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-04372 0242-460100

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूम

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि

0: सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में मजबूती और 54 दहशत गर्दन के जहनम भेड़ो कर डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी दहशतगर्द हमला भारत कराए रो है पाकिस्तान जा दुश्मन न था चाहन तो बलोचिस्तान तरक्की करे फितनतुल ख्वारिज जो इस्लाम सा को भी वास्तो ना है। रियासत पाकिस्तान जो चिटो वाजे मौकिफ है दहशतगर्दन सदन सहूलतकार के खात्मे तीन कार्रवाई जारी रही।
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: मुझे ख्याल में ईरान सा जंग वधी खत्म थी चुकी है। ईरान सा गालू वक्त जो ज्या है ईरानी कूड़ा जहनी बीमार है। टीमू चाहन त गालू वक्त जो ज्या है ईरानी कूड़ा जहनी बीमार है। टीमू चाहन त गालू जारी रखी सकजन थियो। ईरान में पेंजो कम मुकम्मल कंदासी अंकारा में गालाइंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त ईरानी बहरी जहाजन के निशानो बनायो। अमरीका जवाबी हमला किया। स्पेन फजूल मुल्क है। तालुक रखण नथो चाहियां। सदाई नेटो जो दिफा कयो। जरूरत वक्त नेटो मदद लाए ना आयो। नेटो मां खुश ना आया।

0: राज्य नागरिक के सदर डोनाल्ड ट्रंप आए यूक्रेनी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: रब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
5: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014514656 आई तौकीर अहमद 03016923793।

0: कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफ़ो ॿीहर प्रोग्राम में भलीकार ऐं हिन वक़्तु सिलसिलो जारी रखंदासीं कालनि जो, छो जो ब्रेक खां बाद में कालूं वठण जो सिलसिलो जारी रहंदो आहे। कालर लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। दुआऊं दुआऊं तव्हां ॿाहिरनि जूं दुआऊं तव्हां ॿुधायो। साईं ख़ुशि आहियो खेर महीने खां वठी प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब वटि आया हुआ अॻु में डॉक्टर साहब वटि आया हुआ अॻु में कॾहिं कोन न न ऐं डॉक्टर मंज़ूर साहब जी ॻाल्हि पियो करियां, उन वटि आया आहियो कोन आया हो? पोइ त तूं परेशान थिए ई न यार, हर भरो वतींदो अठो महीनो थी वियो सूर जंग में खयूं, तुंहिंजी साईं सम्झ रॻ इहा सीटी पई हूंदी चवंदे मूंखे जेको आहे जंग त सफ़ा उहो लॻी पई आहे सुन, ईअं ई लॻी पई अथई न? भड़कंदी न साईं, ब्लॉक हूंदी भड़कंदी, इन जो इलाजु मौजूदु आहे डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब वटि। ऐं मालिश कंदो आसि छा? मालिश कंदो आसि? बसि माराए छॾी पंहिंजो पाण खे डॉक्टर साहब खां एफ एम तोखे ॿुधावे थो, हिन जी मालिश न करईंसि, मालिश न करईंसि, रहंदो सुजंदी, मालिश करे उन टाइम तोखे सुकून ॾींदी हूंदी, पोइ ॾिसंदो हूंदे त ॿिनि कलाकनि खां पोइ टिनि खां पोइ वधीक सुजंदी हूंदी, सोज कंदी हूंदी, सोज करे थी
1: पोइ
0: मालिश खां पोइ सोज करे थी न? करे थी त न कर न ॾिस, तूं कंहिं सुठे डॉक्टर सां त राब्तो कर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब रोज़ माण्हुनि खे मशवरो ॾिए। किथां थो ॻाल्हाईं? को मसलो ई न आहे, सुभाणे ई हलिया अचो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब मेहरापुर में मौजूदु आहे। 30 साल तजुर्बो अथसि, 30 साल जर्मनी खां पढ़ियल आहे, जर्मनी खां जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक आहे, जर्मनी वारनि जी फ्रेंचाइज़ अथसि। शहर में ई आहे मेहरापुर में। हा हिते रत बत वारो निज़ाम न आहे, प्रॉपर तरीक़े सां इलाज आहे, अलाह ताला जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे। डॉक्टर वॾो डॉक्टर आहे, मशहूरु डॉक्टर
1: आहे,
0: ठीकु आहे। साम्हूं ईंदे त तॾहिं जेको आहे सो ॾिसी करे तुंहिंजो इलाजु शुरू कंदो, ईअं न आहे त एतिरा या एतिरा पंहिंजो हकीमनि वारो ठगनि वारो कमु न आहे, फिक्स न आहे, मरीज़ ते डिपेंड आहे त उनजो मसलो साम्हूं ॾिसबो आहे। वधीक डॉक्टर साहिबु तोखे ॿुधाए थो, एफ एम ॿुध सॼो कुझु, डॉक्टर साहिबु सॼो तुंहिंजो आवाज़ु ॿुधे थो पियो, ठीकु आहे। अच्छा सही सही।

0: ऐं मातली जे मुलण निज़ामाणी ॻोठ में नशे लाइ पैसा न ॾियण तां नाफ़रमान जवाबदार जो माउ ऐं भेण ते विछाणो तशदुद। जवाबदार माउ ऐं भेण खे तशदुद जो निशानो बणाइण बाद फरार थी वियो। केस दाख़िल। पुलिस जवाबदार फुरकान निज़ामाणी खे गिरफ़्तार करण में नाकाम। मुतासिर माउ मूजिब पुट नशे लाइ पैसा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 3 85 569 03 00 33 8 55 69।

0: में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: 45 जवानन शहादत मानी डीजीआई एसपीआर मौजिब गुजर 4 दिन दौरान बलोचिस्तान की ज्यारत मांगी डेम ए दाल बदीन वारन इलाकन में दहशतगर्दी जा 3 वाकया थिया हैं जे दौरान 4 आम शहरियन 27 पुलिस एहलकारन समेत 42 जवानन शहादत मानी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मजमूई तौर 54 दहशतगर्दन के जनम भीड़ो कयो वियो। केर भी पाकिस्तान के डिजारे या धमकाए न तो सके। बलोचिस्तान पाकिस्तान जो आन शान ए मान है। रियासत दहशतगर्दी के हर सूरत में चिटे छड़ी दी। दहशतगर्द खिलाफ जमीनी ए फिजाई ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाए पैसा भारत ए मानू अफगान तालिबान फराहम करे रहा है। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी के समूरन वाक्यन में अफगान शहरी मुलविस निकता है। दहशतगर्दी किथे भी लिकल हुजन निशानो बन जाता। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चाहिए तो कराची वाक्य में भी 10 दहशतगर्दन में 3 अफगानी हुआ। बलोचिस्तान वाक्यन में भी अफगानी दहशतगर्द मुलविस हैं जिनके भारत ए अफगान तालिबान रिजीम की सहूलतकारी मिलल है। दुश्मन न तो चाहे तो पाकिस्तान तरक्की करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो दौरो। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर यूनिवर्सिटी के दौरे दौरान खिताब कंदे चयो तो कौम की हिमायत से दहशतगर्दी जो मुकम्मल खात्मो आणींदासीं। जंगियों सियासी नारन से न पर ईमान इतिहाद नज़म ए जब्त से खटबियों आहिन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अज रात एक भेरों बीहर ईरान मथा हमले की धमकी दई छी। तुर्किया के शहर अंकरा में यूक्रेन के सदर जेलेंस्की से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो तो ईरान से जंगबंदी खत्म थी चुकी है। ईरान से गालियों करण वक्त विन्याण बराबर है। अज रात एक भेरों बीहर वड़ा हमला कर सकूं था ईरानी कूड़ा है। गुजल दिया हुनन अपना हुर्मुस में जहाजन ते ड्रोन हमला कया। डील का सिवाय भी तेहरान के एटमी हथियार हासिल करने वाली सग खत्म करे सकूं था।

कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुजे दुकान जी बे डरंदी?
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: हर सूरत में जिते छड़ींदी दहशतगर्दनि खिलाफ ज़मीनी ऐं फज़ाई ऑपरेशन जारी आहिनि।
2: वो कुवते वो एनिमी कुवते हिंदुस्तान के खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इनलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन एंड द मेजोरिटी ऑफ द पीपल वंस वी एनकाउंटर देम वी किल देम वी एंगेज देम तो ये अफगानी होते।
1: पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ पैसा भारत ऐं माण्हू अफगान तालिबान फराहम करे रहिया आहिनि। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी जे समूरनि वाक्यनि में अफगान शहरी मुलविस निकिता आहिनि। दहशतगर्द किथे बि लिकल हुजनि निशानो बणजंदा। डीजीएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त कराची वाक़े में बि चइनि दहशतगर्दनि मां टे अफगानी हुआ। बलोचिस्तान वाक्यनि में बि अफगानी दहशतगर्द मुलविस आहिनि जिन खे भारत ऐं अफगान तालिबान रजीम जी सहूलतकारी मिलियल आहे। दुश्मन नथो चाहे त पाकिस्तान तरक्की करे। सरहद पार खां थींदड़ दहशतगर्दी खे रियासत पूरी ताक़त सां चिथे छॾींदी। दहशतगर्दनि जूं महफ़ूज़ पनाहगाहूं ऐं सहूलतकार मुकमल तौर ख़तम कया वेंदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जे दौरे दौरान ग्रेजुएटिंग आफिसरनि खे ख़िताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त जंग जे बदलजंदड़ नोयत ॾिसंदे पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौज पंहिंजी हिकमत अमली जदीद घुर्जनि सां पूरियूं करे रही आहे। दुश्मन जूं पाकिस्तान खे गैर मुस्तहकम करण वारियूं सभई कोशिशूं नाकाम बणायूं वेंदियूं। जंगियूं मीडिया या बयाननि ऐं सियासी इदारनि सां न पर ईमान इतिहाद ऐं नज़म ज़ब्त सां खटियूं वेंदियूं आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अॼु राति हिकु भेरो ॿीहर ईरान मथां हमले जी धमकी ॾेई छॾी। तुर्किया जे शहर अंकारा में यूक्रेन जे सदर ज़ेलेंस्की सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान सां जंग बंदी ख़तम थी चुकी आहे। ईरान सां ॻाल्हियूं करण वक़्तु विञाइण बराबरि आहे। अॼु राति हिकु भेरो ॿीहर वॾा हमला करे सघूं था। ईरानी कूड़ा आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं हुननि अपना हुर्मुस में जहाज़नि ते ड्रोन हमला कया। डील खां सवाइ बि तेहरान जेटमी हथियार हासिल करण वारी सघ ख़तम करे सघूं था।

0: शारजा जेॾी महिल सामान खणी विया त उते जहाज़ में फॉल्ट अची वियो। मुंहिंजी नियाणी खे फोन कयो त मां 10 मिंटनि में निकिरां थो, इहो कल्ह जी ॻाल्हि आहे। जेॾी महिल 10 थिया त मुंहिंजी नियाणी असांखे घर फोन कयो। कोशिश राति करण जी असां गूगल ते सर्च कयो त उन ते इहो आहे त जहाज़ क्रैश थी वियो आहे। त एजेंसियूं ऐं जेके इदारा आहिनि उहे कमु कनि पिया। ऐं उन्हनि सां राब्ते में फैसल जो जेको वालिद साहिबु आहे नाज़िम जो, उहो ऑलरेडी अलाह करे को मौजूदु थी थो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
5: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 03005569

जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: It's 9:15 PM.
2: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-338-5569।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।

अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश

0: ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।